0: महल।
1: World Inco Festivity Offer अब पाउंड होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थहरु लागू होने छन् छिटो बनेकै World Inc.
2: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: समीची हूँ चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खातर खाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समीजो लोटी पर दी हूँ छामता ही गुदी
1: बढ़ दी आ बढ़ दी बल लोटर खाली पर दिम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुमी बैंक आप ही बने आ रही
3: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेतरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
5: बीए ताटियो बाबू गर्गना को लागी
3: ना
6: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेतरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
5: बीए त आटियो बाबू गर्गना को लागि पो कहाँ जाने होला
7: गहना चाहिँ एकदम राम्रो अनि आधुनिक डिजाइन को बनाउनु पर्छ है दाई
8: दाजु भाइको केको गफगाफ हुँदै छ
5: के हुनु नि बीए त आटियो गर्गना को लागि कता जाने होला भनेको नि बहिनी
8: ल त्यसको लागि त चिन्तै लिन पर्दैन नि विगत 2034 सालदेखि तपाईँको विश्वासका साथ सेवा दिँदै आएको पुरानो अनि भरपर्दो एकमात्र पसल पशुपति सुनचाँदी पसल छँदैछ नि त्यही जानुपर्छ
5: पशुपति सुनचाँदी पसल कहाँ छ नि यो
8: यो त हाम्रै तमौली बजारको ब्यास 2 सफा सडकमा छ नि त्यहाँ त हामीले अर्डर गरे बमोजिमका आधुनिक डिजाइनका सुन चाँदी हिराको आकर्षक गहना तयार गरिनुका साथै थोक तथा खुद्रा मूल्यमा खरिद बिक्री पनि गरिन्छ साथै चाँदीका कलात्मक थाल कचौरा कलश करुवा गिलास चम्चा रेडिमेड तथा अर्डर गरे अनुसार पनि उपलब्ध छ नि सस्तो मूल्य उत्कृष्ट डिजाइन हजुर तपाईँको परिवारको पहिलो रोजाइ शुद्धता र विश्वासको लागि एकमात्र पुरानो अनि भरपर्दो पसल पशुपति सुनचाँदी पसल गोल्ड एन्ड सिल्भर सप्लायर्स ब्याच 2 सफा सडक दमौली प्रोप्राइटर मोहन कुमार विश्वकर्मा विकास सदाशङ्कर फोन 0656531336 0656504 59 मोबाइल नम्बर 9803880384 9846739131

0: घर।
1: वर्ल्डिंग को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउंड होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट टॉप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्त लागू होने छिटो बने गई वर्ल्डिंग।
2: दमोली FM 94.2 समुदाय को

0: World Inco festivity offer of a £1 एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box मात्र रूप 12 से प्रति महीना में सर्थहरू लागू होने चाहिए छिटो बने गई World Inc.
1: ए कमला कति काम मात्र गरेको बहिनी हिँड न खाजा खान जाऊ
2: खाजा पनि के खानु र दाई खाऊ त्यही मम चाउमिन नखाऊ त्यही मम चाउमिन बाहिरको खाजा खायो बिसन्चो मात्रै बनाउँछ
1: म तिमीलाई मम चाउमिन खान लाने होइन नि दमौलीमा पहिलो पटक खुलेको भागीरथ लच्छा पराठा घरमा लैजान्छु
2: यहाँ के पाइन्छ र
1: साउथ इन्डियामा ख्याति प्राप्त कुकद्वारा स्वादी

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज समुदायक आवाज
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

0: आईएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन
1: सानिमा बैंक सबल अनि विश्वसनीय बैंक
2: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला मा नो कॉम्प्रोमाइज।